फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर. पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो.

सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदाब और सलाम। यह है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों की घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह, विवाह संस्कार, जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहदिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, आज शनिचर है, शनिवार का दिन है, 27 तारीख जून का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह, शुभ दिन पेश किया जा रहा है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। तमाम इन्फॉर्मेशन इन्फो के लिए रेडियो SBS

रेडियो SBS की जरिए विपिन सचदेवा की आवाज में ये सुंदर और अति सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में प्रस्तुत की गई। हर सुबह ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है हमारी सभी भक्त बरानियों के लिए। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से लेकर के और 8 बजे तक ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे से लेकर के और 9 बजे तक ये प्रोग्राम आप सभी भक्त प्राणियों के लिए बस पेश किया जा रहा है। दया बे प्लस द्वारा, दया बे प्लस रेडियो द्वारा ये प्रोग्राम भी सुनाई देता है आपकी मौतकार में, आपकी घरों में, हॉलैंड देश के बीच में, मिडल नीदरलैंड और दूर दूर शहरों तक, और खासतौर पर प्रोविंसी साउथ हॉलैंड में भी ये प्रोग्राम सुनाई देता है आपकी मौतकार में, आपकी घरों में, और जल्द से जल्द और भी शहरों में डीएबे द्वारा ये प्रोग्राम सुनाई देगा रेडियो SBS का। तो चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं सुंदर सा श्री हनुमान जी का भजन।

रेडियो SBS के जरिए ये खास सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए रेडियो SBS के जरिए। सभी सुनने वालों जो स्टूडियो की ओर तार किया है, ऐप किया है, सभी के तार के लिए, ऐप के लिए अलग अलग शुक्रिया, धन्यवाद। और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम भजन यात्रा आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलेंगे अब की बार ये सुंदर भजन की ओर। फिल्म जय संतोषी मां, उसी फिल्म का ये सुंदर भजन बस पेश किया जा रहा है सुरेश वत्कर के आवाज में। एम्स्टरडम साइटोस की रहने वाली श्रीमती बेया ये सुंदर भजन आज के प्रोग्राम में मांग किया है आप सभी सुनने वालों के लिए।

और अति सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जगदीत सिंह की आवाज में अभी आपने सुना सुंदर सा श्री कृष्ण भजन। आज की शनिवार की सुबह की प्रोग्राम में जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए। शनिवार का दिन है और आज भी काफी गर्मी सा मौसम बस होने वाले है। टेम्परेचर तुसें 35 एन 38 ग्राद कहीं कहीं 39 ग्राद भी हो सकता है। तो आज भी काफी गर्मी सा मौसम होने वाले है, फिर भी आप सभी सुनने वालों को एक शुभ दिन शुभ वीकेंड पेश किया जा रहा है। और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर आप सुनते ही रहना।

सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में हरिओम शरण जी की आवाज में श्री हनुमान चालीसा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

हरिओम शरण जी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर श्री हनुमान चालीसा बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं खास तौर पर आरती भजन की ओर, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से आप सभी सुनने वालों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी सुनने वालों जो दुनिया की कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए, उनके पूरा परिवार के लिए, और सभी सुनने वालों जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन, शुभ वीकेंड के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

9:05 में 5 मिनट व्यतीत हो चुका है रेडियो SBS के जरिए। आज शनिवार की सुबह के प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस वक्त प्रोग्राम को भी सुनते हैं। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। आज शनिवार का दिन 27 जून है। 7 जूनी का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज भी गर्मी सा मौसम होने वाले है, काफी गर्मी सा मौसम होने वाले है। फिर भी आप सभी सुनने वालों को एक खूबसूरत और सुहाना दिन बस पेश किया जा रहा है शुभ वीकेंड के साथ। यहाँ से पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जाएगी और पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। सुबह की वक्त है तो आप सभी को हालांकि गर्मी सा मौसम है, फिर भी गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ आप सभी को सुबह की वक्त स्वागत किया जा रहा है और ले चलते हैं पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम की ओर। तो चले प्रोग्राम में पुरानी नगमे की ओर हम आपको ले चलते हैं जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में।

ये फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए है। चले किशोर कुमार और आशा जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मुकेश जी की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मुकेश की आवाज में आपकी बार ये खूबसूरत गाना प्रोग्राम में जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। दमाइती मुकेश की आवाज में ये गाना।

आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा। फिल्म का नाम आसपास, मोहम्मद रफी एंड लता की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में और वो भी लता मंगेशकर की आवाज में। मन मौजी फिल्म का नाम।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ पुरानी नख़्मे रेडियो SBS के जरिए पेश किया जा रहा है, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी

आशा भोसले की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले गाना आज की प्रोग्राम में मुकेश और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। कुछ पुरानी नख में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना और मुकेश और लता जी की आवाज

लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गए। जीवन मृत्यु फिल्म का गीत अभी आपने सुना। सुनने वालों आज शनिचर का दिन है, 27 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। एक बार फिर से आप सभी सुनने वालों को सभी जो रेडियो SBS का ऐप पर ऐप किया है, गुड मॉर्निंग अनहिल खुदमोर्खम। और रेडियो SBS का ये प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। हाँ, मुझे मालूम है बाहर काफी गर्मी सा मौसम है। आज का मेरा टेम्परेचर 35, 38, 39 ग्राद कहीं कहीं हो सकता है।

अपना मुख्य घर में हूँ DAB प्लस रेडियो की जरिए हमारा प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना बहुत से सुनने वालों होते हैं कि DAB प्लस रेडियो की जरिए बस प्रोग्राम सुनते हैं आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा ज्यादा लोग DAB रेडियो की जरिए प्रोग्राम सुनते हैं बहुत से लोग दुकान के अंदर में जाकर DAB रेडियो को खरीदा है।

जादे जादे लोग आहिस्ता आहिस्ता दे या बे रेडियो के जरिए बस प्रोग्राम को सुनते हैं। अच्छी क्वालिटी साउंड में बस हमेशा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और खासतौर पर रेडियो SBS का साउंड जो है दे या बे द्वारा अच्छी क्वालिटी में पेश किया जा रहा है।

गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं एक बार फिर से। लता जी होगा, लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है। हमें मालूम है कि है एक सुनने वालों जो इस गाना को बहुत और बेहद पसंद करते हैं। लता जी की आवाज में यकीन फिल्म का नाम।

न दोगे सपने ये सच भी होंगे, हम तुम कभी और कभी जुड़ा ना होंगे। हमारी एक सुनने वालों है जो इस गीत को काफी पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये गाना आज के ये प्रोग्राम में एडो फिल्म यकीन से बस पेश की गई है रेडियो SBS की जरिए। 27 तारीख जून का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, शनिवार की खास सुबह की प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। मोहम्मद रफी प्रोग्राम में होगा, मरहूम मोहम्मद रफी प्रोग्राम में। स्पेशल गाना की गुजारिश किया है आमस्टरडम शहर का रहने वाला महेंद्र। महेंद्र ओ हेलो गुड मॉर्निंग।

मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई और खास तौर पर आमस्टरडम शहर का रहने वाला महेंद्र के खास गुजारिश पर ये गाना आज की इस खूबसूरत सुहाना मौसम में बस पेश की गई पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम में। कहते हैं जो वादा किया है बस निभाना ही पड़ेगा, ताजमहल फिल्म का गीत अब की बार पेश होगा मरहूम मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

जो वादा किया है बस निभाना पड़ेगा। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था ताज महल। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना। शहरी तरह से रेडियो SBS का ये प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूँ आपका खिदमतगुजार रवीन और आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS। फिल्म राजा रानी, किशोर एंड लता।

किशोर एन लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना बस प्रोग्राम में पेश होगा मोहम्मद रफी एन आशा जी की आवाज में, फिल्म यादों की बारात।

गाना जो प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में मोहम्मद रफी एन आशा जी की आवाज में एटीस विंडोज 4 मिनट ओवर 11:30 स्टूडियो टाइम।

हम सफर मेरे हम सफर मुकेश एन लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। आशा भोसले प्रोग्राम में।

आशा जी की आवाज में फिल्म समाजी, उसी फिल्म का गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। सुन वालों आहिस्ता आहिस्ता पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो है खत्म समाप्त होने पर आ रहा है। चले मोहम्मद रफी एंड सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म जब जब फूल खिले।

जब जब फूल खिले फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आंसरों बीठे पुरानी नगमे जो आप सुन रहे हैं आप सभी सुनने वालों को काफी और बेहद पसंद आते हैं। मोहम्मद रफी एंड लता जी प्रोग्राम में होगा। आहिस्ता आहिस्ता पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो है खत्म होने पर आ रहा है। 7 मिनट 11 सेकंड बाकी है सुबह 11 बजने में। मोहम्मद रफी एंड लता।

फिल्म दो कल्याण उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। मोहम्मद रफ़ी और ख़ास तौर पर लता जी की आवाज़ में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई है। चले प्रोग्राम में एक आखिरी पुरानी फिल्म का गीत पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। और आप सभी सुनने वालों को खबर किया जा रहा है कि कल एतवार है, रविवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। किशोर कुमार प्रोग्राम में। इस गाने के बाद प्रोग्राम में खबरें पेश होगा। खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं आगामी प्रोग्राम लेकर के और ठीक 12 बजे से लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जाएगी। 2 बजे तक हमारा प्रोग्राम रहेगा, जरूर आप सुनते ही रहना।

66-11. चलिए अब की बार कुमार सानू जी की ओर हम आपको ले चलते हैं। गाना जो अब की बार प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है,

सुखविंदर सिंह एन शिल्पा राव की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में चले गाना प्रोग्राम में कमल खान और नीति मोहन के आवाज में आज की

कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। उदित नारायण और श्रेया जी की आवाज

चलिए गाना बाबू सुप्रियो एन अलका जी की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। बाबू सुप्रियो एन अलका जी की आवाज में ये गाना।

सुप्रियो की आवाज में ये खूबसूरत गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। बहुत से सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

सुनवालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज शनिवार का दिन है, आप सभी सुनवालों को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और चले यहां से प्रोग्राम लोकल टाइम आप सभी सुनवालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। और यूं ही तकरीबन 2 बजे तक ये प्रोग्राम हर शनिवार आप सभी सुनवालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। तो चले पहला गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, और वो भी उमर की आवाज में, जरूर और जरूर सुनते ही रहना, जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए आज की लोकल टाइम की प्रोग्राम में मीका सुक्खू और अक्षता नाइक की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

अक्षता नाई की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार अनिल और फरीशा की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

की आवाज में गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई अपने तो अपने होते हैं। लोकल टाइम का प्रोग्राम में ये गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में प्रशांत के बाद

लकी सिंह की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। चले प्रोग्राम में रेमन राम नारायण और राकेश यंगकरन की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश।

गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है मिस्टर ऑलराइट और साथियों की आवाज में ये गाना

और साथियों की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई। आसरो भी थे कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में लोकल टाइम प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। मिस्टर ब्लैक किया

आवास में पेश की गई। आसरा उम्मीद है सुनकर और बेहद पसंद किया है। लोकल टाइम प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा, आखिरी घंटे का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। तकरीबन 2 बजे तक लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जाएगी और हमारा प्रोग्राम भी तकरीबन 2 बजे तक आप सुनते ही रहना। विनेश प्रोग्राम में सुना सुना लागे गाना जो पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। विनेश के बाद मिका सुखू की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

और रेडियो SBS की जरिए ये गाना बस पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में आपकी बार संदीप की आवाज में गाना पेश होगा। लोकल टाइम का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए। शेड्यूल ट्रैक से ये प्रोग्राम हमेशा और सालों से लाइव की

की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-262-6611 और बाकी हर एक कामों काज के लिए 24 पर दाग बराबर होता है रेडियो SBS का कंतूर का टेलीफोन नंबर 030-265-6560।

धीरज की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। रेडियो SBS की जरिए अभी आपने सुना। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं मिस्टर विका की आवाज में हर हर के डाल। आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS।

विका की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में असरों मीठे गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार आज की इस लोकल टाइम की प्रोग्राम में प्रशांत की ओर हम आपको ले चलते हैं। प्यार दीवाना होता है रेडियो SBS की जरिए।

होता है। प्रशांत की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। शेड्यूल ट्रैक से रेडियो SBS का प्रोग्राम सालों से पेश किया जा रहा है और आज भी वही स्टेशन का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चलिए प्रोग्राम में मिस्टर सतीश होगा, सतीश बिंद्राबन कोकोलांपू आपके बार गाना जो पेश किया जा रहा है।

नहीं सुना असरो मीठे सुनकर और बेहद पसंद किया है असरो मीठे। आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। चलिए प्रोग्राम में आपकी बार धीरज की ओर हम आपको ले चलते हैं और गाना जो होगा कम आहिस्ता आहिस्ता लोकल टाइम का प्रोग्राम जो है खत्म होने पर

का वक्त, मैं आप सभी सुनने वालों से बस फिर मिलूंगा। रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना। बैठा आपका खिदमत गुजार अबीन। सभी सुनने वालों जो तार करके अपना रिएक्शंस दिया है, कॉम्प्लीमेंट्स दिया है, सभी के तार के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। कल सुबह ठीक 8 बजे मैं आप सभी सुनने वालों से बस फिर मिलूंगा। मैं था आपका खिदमत गुजार रबीन। हैव अ नाइस वीकेंड। बाय बाय टिल टुमारो।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशली क्रमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशली क्रमलाल, die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 030-262-6611. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

Sailaru, Sailare, क्या बोला फिर बोला रे, इस फिल्म का शाहरुख खान है, ऐश्वर्या राय साहब में चंद्रचूर सिंह. द फिल्म घाट कम दाह सोहदोर उदित नारायण अलका याचनिक सोनू निगम एंड जसपिंदर नरूला. झुमका चांदी दा चांदी दा झुमका चांदी दा.

लीना ओ लीना, आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म स्वर्ग नरक से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों की लहर में है, महबूबा महबूबा फिल्म अजनबी से।

सोना नहीं चांदी नहीं यार ना मिला, अरे प्यार कर ले, इज द फिल्म शुक मंगल सावधान एंड इसके संग बप्पी लहरी, आयुष्मान खुराना एंड आंद्र. गाँव द फेदर मैथ अव द फिल्म हम दिल दे चुके सिनम, हम दिल दे चुके सिनम, द टाइटल सॉन्ग दिस.

मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आपने सुना ये बेहतरीन गाना मुकेश जी की आवाज़ में फिल्म श्री 420 से, और अब आप सुनिए फिल्म आवारा से। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की, लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुनिए बेहतरीन गाना।

पहला प्यार अरमान मलिक की आवाज में आपने सुना फिल्म कबीर सिंह से, और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में फिल्म आजाद से है। लता मंगेशकर की आवाज में आप सुनिए कितना हसी है ये मौसम।

Radio SBS luister je via de website www.radiosbs.nl. Wilt u reageren, kan het altijd. Bel maar gerust naar de studio met 032-62-66-11. En voor alle andere info kun je altijd bellen met 032-65-65-60. Aage bhi jaane na tu, piche bhi jaane na tu. Jo bhi hai, bas yahi ek pal hai. आपने सुना आशा भोसले की आवाज में फिल्म वक्त से, और अब आप सुनिए फिल्म आज का अर्जुन से, लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज में। गोरी है कलाइयां, तुला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां।

तुझ में क्या है दीवाने, खसांद और किशोर कुमार एंड लता मंगेशकर kwam uit de film बड़े दिल वाले. Gaan we verder met uit de film Malang. Hamra is het liedje.

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

वास्तव द फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं, छुप गया बदली में जाके चांद भी शर्मा गया। इसका सॉन्ग दौर उदित नारायण एंड अलका याचिक। इन प्रोग्राम गीतों के लहर से फोहत लीजिए बंधु मेरा द फिल्म जवान जाने बन।

आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। ये बेहतरीन गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ पे फिल्म अनपढ़ से, और अब आप सुनिए फिल्म देवदास से उदित नारायण की आवाज़ में वो चांद जैसी लड़की।

0: बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी, बना दीजिए इनको किस्मत हमारी।
1: उसे और क्या चाहिए जिंदगी में, जिसे मिल गई है मोहब्बत तुम्हारी।
2: किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख के। बेहतरीन गाना आपने सुना फिल्म तरकीब से, जगजीत सिंह और अलका याचने की आवाज़ में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। फिल्म दिलविल प्यार व्यार से आप सुनिए, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम।

रेडियो SBS के जरिए से आपने सुना फिल्म खुदा हाफिज से। आप हमारी जान बन गए, मिथुन, विशाल मेहरा और अजीज कौर की आवाज में। और अगला गाना रेडियो SBS का प्रोग्राम में है फिल्म ऐतराज से। उदित नारायण और सुनिधि चौहान की आवाज में आप सुनिए गीला गीला गीला दिल गीला गीला।

बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफ़र है, धड़क आहिस्ता है ये दिल, मोहब्बत का सफ़र है। कम आउट द फिल्म जॉगर स्पार्क। Gaan we dan verder met uit de film Reis. Gezongen door Pauni Pandey komt Leila met Leila.

दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, सबको हो रही है खबर मगर चुपके चुपके। ये बेहतरीन गाना आपने सुना कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म परदेस से, और अब आप सुनिए कूली नंबर वन से कुमार सानू और अलका याचिक की आवाज़ में, तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ।

शुभ मंगल सावधान से आपने सुना आयुष्मान खुराना की आवाज में मेरे लिए तुम काफी हो। और अब आप सुनिए परदेसिया, ये सच है प्यार, द रीमिक्स। परदेसिया।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।